0: बिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौनरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौनरोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
2: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिल्बो नि करत का कैन हो का
1: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26।

0: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मैं नहीं जाऊं वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
1: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली

0: से कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आदि था, का कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक्ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लंबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी एक आनल झोला दस कटरास बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उग्रन स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो मफे सुन्ती रहलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य शीर्षक से। देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव, आज 6 प्रदेश में भारी पानी पर्न संभावना, सतर्क रहना नागरिक मौसमविद के आग्रह। जानकी गांव पालिका में सफेद टीकापुर नगर पालिका में खर्च कम, टीकापुर के खर्च जानकी के खर्च में 10% ध्यान। लम्फी चोहा में यातायात कार्य संचालन माइल पास सवारी साधन नवीकरण में सहज, असार 20 गते सम 1,30,00,000 राजस्व संकलन। टीकापुर के सामुदायिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक उपकरण शैक्षिक डायरी वितरण। पूरा खबर। हाल देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव रहल, मौसम पूर्वानुमान महाशाखा से जनायल बा। हाल मनसूनी न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थान से कुछ ऊपर रलकोर से, जेकर प्रभाव से हाल देशभर साधारणतया मौसम बदलती बा। सुरपश्चिम लुम्बिनी कर्णाली कोशी बागमती और गंडकी प्रदेश के ढेर स्थान में तथा मध्य प्रदेश के एक दो स्थान में हल्का से लेके मध्यम वर्षा होती रहल बा। कैलाली के टीकापुर आसपास क्षेत्र में फिर बिहान से पानी पड़ती बा। आज दोपहर के देशभर अधिकांश मौसम बदलने बाकल से तराई पहाड़ों हिमाली भूभाग में कुछ स्थान में चट्टांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहल बा। टीकापुर नगर पालिका के चालू आर्थिक वर्ष के खाता बंद अवधि सम करीब 75% बजट के खर्च हुई बा। चालू आर्थिक वर्ष में नगर पालिका के 1,05,51,00,000 बजेट रकम में 78,75,00,000 रूपया के खर्च हुई बा। 66,76,00,000 रूपया चालू बजेट में रकम में 53,85,00,000 रूपया खर्च हुई बा। उसके 38,75,00,000 रूपया छुट्टियाल पूंजीगत में 24,80,00,000 रूपया के खर्च हुई। टीकापुर नगर पालिका की लेखा अधिकृत लक्ष्मी ओर जानकारी दिए बाटे टीकापुर नगर पालिका में यह वर्ष 70 थुसे ढेर योजना टेन्डर मार्फत कार्यान्वयन हुई के हो। ई ठेक्का में निर्माण व्यवसाय हुक्रा प्रतिस्पर्धा करके खर्च घटल बा। टीकापुर नगर पालिका के राजस्व संकलन के लक्ष्य भर पार करल बा। आर्थिक वर्ष ओरैना 6 दिन बाकी रहे लक्ष्य से फे 87,00,000 रूपया ढेर राजस्व संकलन हुसेकल। नगर पालिका के राजस्व शाखा प्रमुख नन्द बहादुर केसी बटोले बाटै यहाँ जानकी गांव पालिका में चालू आर्थिक वर्ष में 84.11% खर्च हुआ, जिनमें पूंजीगत खर्च में 64.31% हो, चालू खर्च और 92.43% खर्च हुआ। आर्थिक वर्ष 2082-83 में गांव पालिका के 64,94,00,000 बजेट रहल में 54,62,00,000 रूपया खर्च हुई। जानकी गांव पालिका के लेखा अधिकृत दिनेश माझी जानकारी दिले बाटे जोशीपुर गांव पालिका के चालू आर्थिक वर्ष में 85.24% बजेट खर्च करल बा। गांव पालिका के लेखा अधिकृत तिपेश तिमिल सेना के अनुसार चालू ओर 93.19% तो पूंजीगत ओर 66.14% करके 85.24% खर्च हुई बताइल बा। उसके लम्की चोहा नगर पालिका आर्थिक वर्ष 2082-83 में 75.18% रकम खर्च करल बा। चालू ओर 88.32% पूंजी ओर 57.4% बजेट खर्च करल। नगर पालिका के 1,22,00,000 बजेट रहल में 91,78,00,000 रूपया खर्च करल। नगर पालिका के लेखा अधिकारी झनक नेउपानी जानकारी दिले बाटे। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पास फिर से भी सुनती रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको बेवरा संबंधित सबै का लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फ का शैक्षिक कार्यक्रम
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीएका लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएसका लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, नेपाली, हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, डेभलपमेन्ट स्टडीज, सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे। कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्याहन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस।
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने।
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
2: आईसीटी, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज, उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने।
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाइफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खाने पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर, कैलाली।
3: चुरे जोगाऊ, पानीका मुहान बचाऊ, वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौ, हरियाली बढाऊ, चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो, समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लम्की कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा साउन 9 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग, मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान, एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिजाएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-770। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन साउन 9 गते दोस्रो शनि।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागतमा। लम्कीचुहा नगरपालिका 4 बलियामा वैशाख 14 गते से यातायात कार्यालय सञ्चालन मालिकी हो। आर्थिक वर्ष के अन्तिममा अब दैनिक 100 से ढेर सवारी सेवा समेत लिटिरहल बाटै दैनिक यातायात सञ्चालन माइल पाछे सेवा ग्राही कुरण सेवा लेन सहज हुल्बा। पहिले धनगढ़ी जाइपर्न बाध्यता रलकमा अब आफ्नै पालिकामा यातायात सञ्चालन माइल पाछे सेवा लिन सहज हुइल। लम्कीचुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 भगतपुर के बलबहादुर राउत के कहाइबा, घोडागौड़ी 2 सुखर के अमित कुमार चौधरी फे। लम्कीचुहा नगरपालिकामा यातायात सञ्चालन माइल पाछे धनगढ़ी जाइपर्न दिनभरि समेत लाइनमा बैठेपर्न बाध्यता फे घटल बटोले बाटै। जसपुर गाउँपालिका 7 लोहगारके सृजना फुलसे फे बाइक के ब्लूबुक नवीकरण धनगढ़ी जाइपर अब जाय नै परत लाइनमा फे बैठे नै पर्ना सेव लेन सहज रहल बटोले बाटै कार्यालयमा दैनिक समेत पाँच लाख समके रासो समेत उत्तीर्णको असार 20 गते सम् 1,30,00,000 रासो उठल यातायात कार्यालयकै कम्प्युटर समेत हेमन्त बहादुर शाही जानकारी दिले बाटै यातायात कार्यालय बलियाके निमित्त प्रमुख चक्रबहादुर उपाध्यायसे कार्यालयमा सबको प्रकारके गाडीके बुलबुक नवीकरण रासो संकलन हुइति रहल जानकारी दिले बाटै टीकापुरमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकउकरण शैक्षिक डायरी वितरण करल बा टीकापुर सामुदायिक विद्यालयके 400 शिक्षकउकरण डायरी वितरण करल के हो डायरीमा शिक्षकउकरण पाठ्य योजना बनाइन सहयोगी समेत हुना कहलबा टीकापुर नगरपालिकाके शिक्षा विकास शिक्षा शाखा से टीकापुर अन्तर्गत के रलक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकउकरण शैक्षिक डायरी वितरण करल के हो डायरीमा शिक्षकउकरण के दैनिक पठन पाठन करबेर आवश्यक पर्न निर्देशन सहित के दैनिक आठ पाठ्य योजना निर्माणमा सहयोग पुग्न करके नमूना तयार पारगिलवा शिक्षक डायरी वितरण के उद्देश्य बारेमा समेत टीकापुर शिक्षा शाखा के प्रमुख नरेश अवस्थी बताएल हैं जेकर से शैक्षिक डायरी शिक्षक उपकरण के लग एक सहयोगी साधन हुईलक ओर से शिक्षक डायरी पाके शिक्षण सिकाई क्रियाकलापमा सहयोग पुग्ना शिक्षिका सुमन खड्का बटोले बाटै उहाँके अनुसार एक दक्ष शिक्षक से कम्तीमा काल का पढ़ैना शिक्षण का करैना आवश्यक और विधि समेत के बारे में सहज हुना बटोले बाटै टीकापुर आठ स्थित त्रिभुवन मावि बटनपुर से शिक्षक उपकरण ल्यापटप वितरण करल बा विद्यालय के कक्षा 8, 10 और 12 के विद्यार्थी उपकरण की सिकाई सुधार के लग अंग्रेजी गणित विज्ञान नेपाली विषयमा अध्ययन करैना शिक्षक उपकरण ल्यापटप वितरण करल प्रधानाध्यापक रविन्द्र बहादुर कठायत जानकारी दिले बाटै ल्यापटप वितरण कार्यक्रममा टीकापुर नगरपालिकाकै शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी विद्यालय व्यवस्थापन समितिके अध्यक्ष हिरालाल चौधरी लगायत से सहभागिता रह खोजखरमा गरी फेन्से विश्राम विश्राम पाछक फेर्से विश्वन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टिकाप्र एफएम
4: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
5: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो
6: हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन र्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
7: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
8: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
7: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
8: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
0: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपार के तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव खतिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होइति रहल बा सम्पर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नम्बर 9860071024 ओ 9046477417
9: मिश्राम पाछ फेर से स्वागत बा संयुक्त विद्यार्थी संगठन से माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन करल बाटै गरेश नेपाली के आत्मा दाह के घटना और सुकुम्बासी हुकरण के अमानवीय हरकत कहती संयुक्त विद्यार्थी संगठन से माइती घर में प्रदर्शन करल के हई। सरकार के कारण गरेश नेपाली के आत्मदाह करलक में आरोप लागल बा। टीकापुर में फिर विद्यार्थियों का प्रदर्शन करल बाट नेपाली हुकरण के आत्महत्या के घटना के आत्मदाह के घटना अनुसंधान करना डीआईजी गोविंद थप्पलिया के नेतृत्व में 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन करल बा। गृहमंत्री सुदन गुरूंग से प्रतिनिधि सभा में बोलती इस घटना के बारे में छानबीन प्रक्रिया आगे बढ़ल जानकारी दिले बाट। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव आज 6 प्रदेश में पानी पर्न संभावना सतर्कता अपनाइन नागरिक हुकरण मौसमविद के आग्रह। जानकी गांव पालिका में से फिर टीकापुर नगर पालिका के खर्च कम टीकापुर में खर्च जानकी के खर्च से 10% ध्यान। लम्की चोहा में यातायात कार्यालय संचालन माइल पास सवारी साधन नवीकरण में सहज असार 20 गते सम 1,30,00,000 राजस्व संकलन। उटीकापुर के सामुदायिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक उपकरण शैक्षिक डायरी वितरण। दुटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान खबर सुन सकते अब की खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हो सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रह राम राम।

0: ऐ विवेक ऊ ढ्याङ खास छपासोट जिन्छ हो फुटबल बन्द विवेक वहाँ कहाँ हुन् वहाँ छप्स्यारो नाचाउ कहदन हुन्
1: ओ हेरो त उहाँ सब भागल पातल कि का हो विवेक न एक हरी स्कुल फुटबल ह्याराइ लग्छन् काट सब आपलन
0: बैठो हाम्रो यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र पुगैबी ऐ पारस तु घर डाबु हो न मोटरसाइकल लेखाएको
1: हो
0: त
1: हो विवेक न यहाँ खुला ठाउँमा सुताई यो झल्याङ झुलुङ निकराख न मुहारी कापीले ओहेन हौ पिल्लीमा काट राखल सोइचिबा काटल ठाउँमा न छो चलाइ नि
0: आफै विवेक हन सजिल हुन वाकर कसकेला केटी तान धीरे धीरे खोल देखु ओ घरी वो मुन्द्री फेक खाद देहम
1: बिठारो सन मै यही डाला विवेक का जुत्ता वो मजा धीरे धीरे निकाल देहम
2: झूर जसिन सापन का दसाई खतरनाक नी रहा समय मोजो उपचार कराई से क्लसे दिखा सपन का कातल मन यहाना फेब बचाई से जिठा सपवा कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्र में पुगाई से क्लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई से जिठा
3: विश्वास लग्ना वो सही जानकारी पाइक लाख लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाख आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिएसेक जिठा
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज था, कहा कना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नाम था,
0: कहाँ से लंबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल ले रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: पंछी पालन व्यवसायहरूका लागि जरूरी सूचना बर्ड फ्लू H5N1 पंछीमा लाग्ने उच्च मृत्युदर भएको संक्रामक रोग हो। विगत 3 महिनादेखि देशका विभिन्न स्थानमा यो रोग देखा परिरहेको छ। पशु सेवा विभागबाट सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा रोग नियन्त्रणका प्रयासहरू भइरहेका छन्। तसर्थ पंछीपालक कृषक व्यवसायीहरूले रोगको संक्रमणबाट बच्न एवं रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्न निम्न कुराहरूको पालना गर्न सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौ। फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अवलम्बन गर्ने अण्डा राख्ने पुरानो कागजको क्रेट पुनः प्रयोगमा नल्याउने तथा ढुवानीको साधनलाई फार्म परिसरभित्र ल्याउनु पर्ने भएमा पूर्ण रूपमा निसंक्रमण गरेर मात्र भित्र्याउने काग लगायतका जंगली पंक्षीसँग घरेलु पंक्षी तथा पंक्षीको दाना लसपस हुन नदिने गरी थुनेर राख्ने पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्दा अनिवार्य रूपमा भेटेरिनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र गर्ने कुनै पनि पंक्षी फार्म वा बिक्री स्थलमा अस्वाभाविक रूपमा धेरै संख्यामा पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा तुरन्त नजिकैको पशु सेवाका निकायमा जानकारी गर्ने र बिरामी वा मरेका पंक्षीको मासु बिक्री र सेवन नगर्नु हुन अनुरोध गर्दै यो रोग नियन्त्रणमा सहयोगको लागि सबै सरकारवालाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। रानी जमरा कुलरिया सिंह आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटिलो ठाउं से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हेरे थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जस्ते स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फे करा जाए एक सौ सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: आई गई क्या आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाईकन आएकी होली मेरी चेली
4: तनखा खाईकन होइन बुवा तनखाले भोलिका दिन कि ढुक्क पारिकन आएकी छु हो भने बुवा पहिला महिनाको तनखा पाउने बित्तिकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु सिटिजन लाइफमा त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन् भाइका लागि बाल भविष्य योजना कमिरे आमाका रिटायरमेन्ट समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना वाँची मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन तसाईले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे
3: ठिक गरिबा आफैबाट सुरु गर्नु पर्दछ हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ
4: बुवाका अनुभव र मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त हैन बुवा सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स जहाँ भरोसा र भविष्य सँगसँगै हिटो छ झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 नि सम्पर्क हरे
5: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दे घुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिके बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41268 और 98486 39261

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान रिठाई, घरक भिटा हामी निके निउराइ छौ कि का? खेतमा सखारनका लागि निनी लैजाइ पर्ना रह।
1: आबो ओराइदा जान्ती बादा
2: ल्या ल्या, मै मिनी बनाकर हैदिय तु लैजा दिएस न।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो, यहाँ भित्ता मत बिलाको बा, माथिले सब दिए पर टिका हाँ सब दिउ। अय्या दाई सब का डरल
2: दाई, खै खै कहाँ काटल छै?
1: यहाँ दाई, ये दाई नाजम का डरल।
2: अरे लेव हाली क्यों बाटो, मत छै मुस्कान हट सब का डरलस। लेव हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश, मुस्कान न सपुआ करलस कल
3: ना त्याव काकी तो मुस्कान न्या त्या का शांत होकर बैठो ना। बेन काकी मुस्कान न श्वास का न सुटाई हलचल निकल रखना।
2: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो ता
1: बैठा।
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा गर गहना निकल जैना मेकअप फांसर बना रही था, वो हाथक चुड़िया की निकाल दी था, वाकर कटलक हाथ भर नहीं चला था।
2: बैठा भैया सबको कटलक था आंदर पांदर चीर का इंजेक्शन ले कान का अथवा मुंह ले सूस का बीस पोर निकले ना होती।
3: नहीं नहीं काकी, सबको कटलक घाव आंदर पांदर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई, वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई, पानी के नहीं बुझली।
2: उसी नो कल से झर मेरा लान खा वही नीटा खा वाकर सबको कटलक था मर लगा दी उठा ना नानू।
3: उफे नहीं हुई काकी, घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली।
2: बुझनु नानु बुझनु।
3: बेन काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लेखा आई कही झट्टा से झट्टा साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाई सेक जाई कल से मुस्कान होना झट्टा चुमर बनाई सेक जाई दादा आई का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम दाता अन कह हेरा पड़ल। हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुलल। हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में सर्पदंशक उपचार कही जिना रही हो वहां ले जाए पड़ल मुस्कान
2: होना। राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई ला।
3: लेव लेव लेव काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में बैठा लारी का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए कल से मुस्कान हना बताई सेक जाए।
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डस्ल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहां कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली।
4: मोटरसाइकिल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साथ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखा इसे बस से भूख सपो विषाहर अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा।
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मने यहाँ बचाई से दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर से दिखा सपवा डसलक मने यहाँ छत्त से छत्त उपचार केंद्र में ले जा दाई इहिले ऊ मने एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए से दिखा।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: बुका पिएर इठ कबु पेन्सिलेर इठ कबु झोलै फटाका आज इठ का कना हो बाबा फिर उष्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल हेरी थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रत गैया झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

भ्रष्टाचार करू या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासनयुक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी एकाधारे महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: आज तिमी मेरो वरिपरि किन घुम्दैछु छोरी?
1: आमा, मलाई सिक्री बनाइदिनुहोस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
0: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
1: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त, पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
0: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
1: न्यू अछाम जाल्पा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
2: न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टिकापुर। न्यू अछाम जाल्पा देवी ज्वेलर्समा नयाँ नयाँ डिजाइनका विभिन्न गरगहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चुरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसनका गरगहनाहरू पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 9868-14-799, 9824-60-25-32। अछाम मंगलसैनका लागि ध्रुव सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 9824-67-28-25।
3: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
4: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
5: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
3: डेलिभरीका लागि
5: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल,
3: टिकापुर कैलाली।
6: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870-10672।
7: स्वास्थ्यका लागि पानी
8: कार्यक्रम छोट मिट साता के बुधबार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
9: जब देखनो तुहिन है,
8: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915-61-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: जतई सपवा मादे माने ते काती
1: ना आता छावा सापन कुछ नहीं कराय सम सांप कुछ नहीं करता ल्या वो अपने चल गए था कुछ कराय था वो सब कुछ सांप बिखा थे नहीं रहता
0: बिखा हो कि नहीं हो कका कसी कसी ही ना तंदाई
2: ल्या नेपाल में पाजे ना बिखा सापन का विषय मसून एक थोड़ा ठह गरे जा जो उन खास कह कर रातिक समय में घर भीतर पैठा सेक था ये कटला से निबटाई फिर सेक कर तरह कटला पास है देह भाग जो निचलना कह कर सांस फेर जो निशेकना में से लक्का हुई सेक था और रठह डोम जो उन बड़ा रिशाह मेरी कर था इनकर फाँट फूले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह कर संजय ध्यान देख पड़ता इनकर कटला से फिर लक्का हुई सेक था वो और रठह कैदी जाटक सांप इनकर कटला कला से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर रसे बैठे था रकत के पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमारे देश तरह एक सबको भूभाग में पा देना बगोपने न फुनकार ना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तरह हिंकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बरखा छाया को अनाज बिजली ना समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ढूंढ मिला कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप के कारण सापन का बचारा ना सिदेश सापन का दसाई का घटना ढूंढ मिला कर लग पा जाए
4: झूरजसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपवा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौं
7: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
8: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्साजन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
7: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
8: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
9: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 9854899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संध्या 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने कन स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल सम्र पात्र नेपाली पात्र मफी सुन्टी ढलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से सुरपश्चिम विवाद व्यवस्थापन श्री दिलीप बैना मुख्यमंत्री शाह के निर्देशन। पशुपति में ऐना सोमवार तैयारी सफाई अभियान शुरू। कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त में डाक्टर तुलाधार। राष्ट्र बैंक द्वारा निष्क्रिय खाता कार्य योजना महीना न्यूनीकरण करना निर्देशन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विपद व्यवस्थापन अभिन प्रभावकारी व्यवस्थापन बनिना दुई महत्वपूर्ण कार्य योजना अनुमोदन करवा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह के अध्यक्षता में बैठक परिषद बैठक मंसूर पूर्व तैयारी तथा प्रति कार्य प्रादेशिक कार्य योजना 2070 पांचौ संशोधन 2083 तथा बहुप्रको पूर्व सूचना रणनीति कार्य योजना 2025-30-2082 स्वीकृत कलबाट मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में शनिवार बैठक में विषयगत मंत्रालय के मंत्री सचिव तथा प्रदेश स्थित सुरक्षा निकाय के प्रमुख के सहभागिता रहा। अनुमोदित मनसून पूर्व तैयारी कार्य योजना में बढ़िया पहिरो डुबान कटान सड़क अवरोध लगायत के वर्षा में देखना सीखना जोखिम के पूर्वानुमान जोखिमीकरण के उपाय खोज तथा उदार राहत वितरण पूर्ण स्थापना सम्बन्धी स्पष्ट कार्य विभाजन समावेश कलबाट संघ आपतकालीन अवस्थामा कुन निकाय कसरी परिचालन हुनका के विषयमा कार्ययोजना स्पष्ट पलबाट कार्ययोजना तयार कल विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन योजना प्रति कार्य कार्य ढांचा हो सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था आधार बनी प्रदेश सरकार जनवा वस्तकर के स्वीकृत बहुप्रको पूर्व सूचना रणनीति कार्य योजना 2025-30 प्रदेशभर प्रभावकारी पूर्व सूचना प्रणाली विकास हो विस्तार में जोड़ दिलवाट जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ो विपद जोखिम ध्यान में धरती मानव केन्द्रित पूर्वानुमान संचार संयंत्र सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक प्रविधि के प्रयोग मार्फत जोखिम न्यूनीकरण करना लक्ष्य कार्ययोजना दिलवाट। साउन महिनामा आराध्यादेव भगवान पशुपति नाथके पूजाधना एवं दर्शन केलाक ऐना भक्तजन के सहायता केलाक पशुपति क्षेत्रमा सफाई अभियान शुरू करगिल्बा। साउन महिना हो सोमबार आशुतोष भगवान शिवके महिना हो बार मन्ना हुलक एक दिन लाखो भक्तजन पशुपति के नाथ पूजाधना एवं दर्शन केलाक ऐना कलबाट भक्तजन हुकनके सहज रूपमा सेवा देना उद्देश्य के पशुपति क्षेत्र विकास कोष आशे सफाई अभियान शुरू कल कार्यवाहक सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष मीना कुमारी श्रेष्ठ के राजसँग जानकारी दिलवाट। पहिलो दिन आज पशुपतिनाथ मूल मंदिर क्षेत्र में से सूर्यघाटसम सफाई करगिल्बा। यह अभियान में आईतवार अपहरण पाछा निरंतरता दिना वहां बोटिलोट आईतवार मूल मंदिर बंद हुई पाछा सूक्ष्म रूप में सफाई करना अलग अलग जनटीय महासुरक्षा निकायफ सहभागी करने वहां उल्लेख कलबाट। पहले दिन पशुपति क्षेत्र के सफाई में दर्जन भरी संघ संस्था के सहभागिता रह कोष के आशी शुरू कलक सफाई अभियान प्रत्येक हफ्ता के शनिवार फिर निरंतरता दिना तैयारी कलक को सदस्य श्रेष्ठ बोटिलोट वहां के अनुसार साउन के फिर आईतवार और अन्य दिन में फिर आवश्यकता अनुसार विशेष सफाई अभियान संचालन करना हुईबाट। खोज खबर मैखरी विश्राम विश्राम पासा फिर से सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एण्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एण्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने।
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
2: आईसीटी इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने।
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाइफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खाने पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर, कैलाली।
0: के तपाईलाई थाहा छ,
3: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
3: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
3: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
3: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
3: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाइ शाखा, टिकापुर, कैलाली।
4: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
5: अरे का करूरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नि करत, का कैना हो का?
4: मिस्तरान बर्जन हो कना घर हेरो ना, अट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका, द्वार, पार्टिशन, स्टील की रेलिंग, आगे पानी हो, घाम से नहीं बिगड़ना, खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना, विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस, जमरा के उपार, टीकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट, मोबाइल नंबर 98-48-51-43-26।
0: विश्राम पाछ फेरि स्वागत बा। निर्वाचन आयोग नेपाल कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तकी जिम्मेवारी आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधार समलबाटी, इन्स्याघकी कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, यहाँ 7-23 गते 65 वर्ष उमेर हत्के कारण बकाशुल पाछ वकर पाछ वीरियत मरहरक आयुक्त डाक्टर तुलाधर हो जिम्मेवारी सरलबाट आयुक्त भण्डारी के नेतृत्वमा गत फागुन 21 गते प्रतिनिधि सभा सदस्य कि निर्वाचन सम्पन्न हुई रह 5 सदस्य हुन आयोग के हाल आयुक्त डाक्टर तुलाधर हो आयुक्त सगुन शमशेर जमरा कायम रहे। तत्काल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया के 2082 वैशाख 5 गते हो। तत्कालीन निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी प्रसाद पौडेलकी 2079 फागुन 4 गते कार्यकाल ओराइल रह। संसदीय सुनवाई समितिकी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त के लाख सिफारिश कलक 3 जना विरूद्ध उजारी आह्वान सहित चुनाव प्रक्रिया शुरू कलबा। संवैधानिक परिषद के मानबहादुर कार्की मोरङमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा डाक्टर राजीव सुब्बा काठमाडौँ गुरूप्रसाद वाग्ले ओखलढुङ्गा निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिश कलबाट। नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतकी बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफ्नो संग्रह निष्क्रिय खाता न्यूनकरण सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाएकी 2083 पुष मसान्तसम्म लागू गर्न पर्ना निर्देशन दिलबाट राष्ट्र बैंक इजाजत पत्र प्राप्त क वर्ग के वाणिज्य बैंक, ख वर्ग के विकास बैंक, ग वर्ग के फाइनान्स कम्पनी हुकन शुक्रबार जारी कलकी निर्देशन 2082 संशोधन तथा परिमार्जन करके निष्क्रिय खाता न्यूनीकरण गर्नतर्फ आवश्यक कार्यमा खबर हिना निर्देशन दिलबाट राष्ट्र बैंक इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अलग सक्रिय खाता निष्क्रिय हुन पूर्व फोन एसएमएस ओ ईमेल लगायतकै माध्यमसे ग्राहक नियमित रूपमा जानकारी गर्न व्यवस्थापन निर्देशन दिलबाट शंकरकी इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था निष्क्रिय खाता सक्रिय करेकला कम्तीमा छ महिना अवधिकै अन्तरालमा फोन एसएमएस ओ ईमेल लगायतकै माध्यमसे फेरि सम्बन्धित ग्राहक अनुरोध गर्के उहो अभिलेख समेत धन अपना व्यवस्था कलबाट खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछ फेरसे विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: यही असार 27 गते शनिबारका दिन
8: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एण्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
9: डाक्टर आउने दिन असार 27 गते शनिबार।
8: आरोग्य मेडिकल एण्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
10: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
11: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली। संचालक मदनराज देवकोटा। स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि। सम्पर्क नम्बर 9849585808।
0: विश्राम पासा फेरि स्वागत बा। खेल खबर। एसीसी यो 19 महिला प्रिमियर कपमा नेपाल कतार 105 रनके फराकिलो अन्तर पराजित गर्दै प्रतियोगितामा शानदार शुरूआत कलबा। पहिलो ब्याटिङ कलक नेपाल निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाके 130 रन बनाइना सावित्री धामी सर्वाधिक 52 रन जोडी। नेपाली बलहरूकनकी कसिलो बलिङ सामु कतारकी टोली 12 ओभरमा 25 रनमा अल आउटले सेफी रचना चौधरी रिया शर्मा समान 3-3 विकेट लिलबाट। यही समाचार सँग खोज खबर बराली जनासे पहिले खबर के मुख्य शीर्षक फेरि एकचो। पश्चिम विपद व्यवस्थापन स्वीकृत बन्ना मुख्यमन्त्री शाहके निर्देशन। पशुपतिमा साउने सोमबारकै तयारी सरसफाई अभियान शुरू। कार्यभार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा डाक्टर तुलाधार। राष्ट्र बैंकद्वारा निष्क्रिय खाता कार्ययोजना बनाएकी न्यूनीकरण गर्न निर्देशन। जिताबुकला खोज खबर अछ। प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद। जिताबुकला खोज खबर से मैसिता चौधरी विदाई टू एक पास 6 बजे के खोज खबर सुन्न सिक्दी सामुदायिक रेडियो टीका प्रोफेम सुन्टी रवि राम राम।
12: सापन कुछु नि कराइ सम साप कुछु नि करत ल्या वो अपने चल गेल त कुछु कराइल त ओ सक्कु साप बिखा थे निरत
13: बिखा हो कि नि हो कसी कसी हिना त दाई
14: ल्या नेपालमा पाजना बिखा सापनको विषयमा सुन। एक ठोरठ गरैचा जोन खास कैख रातिक समयमा घरभित्र पैठ सेक्ठ यी कटलसे निबठाइखे स्याकत तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेक्ना मेसे लक्क होइ सेक्ठ और रठ डोम जोन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाँट फुले ठ डोम साँप दिनवा रात दुनुमा डेक पर्ना ओ खास कैख सन्ध्या बिहान डेक पर्छ निकर कटलसे फे लक्क होइ सेक्ठ ओ और रठ कैरी जातक साँप निकर कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बरा कर्रसे बठे था रकट थे पाती रोकर रकट बहना हुई से था उसने कहा हमार देश तराई सबको भूभाग में पा देना बगोक ने न फुनकारना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम केल पा दे था तर हिकम कटाई एकदम खतरनाक रहा
1: बर्खा छा को अनाज बिक्रीना समय में तापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ढीर मिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण तापन का बचारा नासिबेर तापन का दसाई का घटना ढीर मिना कर लग पा दे
15: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वो खे यदि सपवा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
16: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
17: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
18: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
4: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
18: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
18: अब त म ढुक्क
19: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
4: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
20: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर FM 101 मेगाहर्ज

0: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कूटपीट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव और शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखने से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे, जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित तो सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।
2: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महान भावहरूलाई नास्ट कलेज का तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। उच्च जीवन स्तर निर्माण का लागि

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सेकी जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नै हुईबी भ्रष्टाचार करुया मनै न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करत लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगके कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: फुका पिएर कभी पेन्सिल कभी झलै फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँसे झोला आनलसे त लड़का सामान निहराए।
1: ओहो ये बुढ़ा लिखने का हुई थी जरा भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेन्सिल हेरा कई ठो कबू झोलै फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं सीख ठो।
1: अरे कहाँ से नाम
0: तो कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेन्सिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: का हुई बाबू अपने कलका लाइट रही अपने काकर कलका लाइट रही ले भुइया में के हो काकर भुइया में ढनवा नाल बाटी
1: सुनी ना दादू हमरा दुनू जना बना में घास काटा आयल रही मर संग भी सब पका दल की ना दादू हाली का करना हुई यही ना सत्य है उपचार के नौ पुकार पहले से मिले रहा
0: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के असिया लाग के बैठनी हुई यह लग्य बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नहीं आता है ना संघरिया ध्यान दी हेलो मुकेश तू जत ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाऊ पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जत ही आओ हाँ सबकू काम छोड़
2: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू जत्ते
0: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जतरा साइकिल झटते ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा डाले पड़ता ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन बाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेरे से बैठा कर उनके उपचार केंद्र पुराई पड़ता मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भरपर में संघरिया मैं तुरंत बेहद में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच ऐसी बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डालते हैं अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
1: लगा
3: दादू सात दस से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
4: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मनिन बचाई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दी था सांप डसलक मने न छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले ऊ मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई थप पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snakebite.nepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

छुटो उसको नहीं किसी मले पढ़दै गरौ जाम्बिया हो हाम्रै न छुटो उसको नहीं किसी मले पढ़दै गरौ जाम्बिया रा ताल पढ़ौ पढ़ौ न तिली चो।

उत्साह हर्षसित मुग्ध मातृभाषा हो विश्व साथ यशको छ घनिष्ठ नाता सत्कार्य आदि कवि को

0: भैंसी को पाली हराए सूचना। टीकापुर नगरपालिका वडा नंबर 1 ब्लॉक नंबर 23 बस्ने देव बहादुर शाह को 11-12 महीना को भैंसी को पाली असार 26 गते राति 11 बजे तीर आपने घर बाटे हराए हुआ भेट्टाउनु हुने महानुभावहरूले मोबाइल नंबर 9840-81-61 वा 9864-80-59-20 अथवा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम में खबर गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
1: एघार प्रकार का विशेषज्ञ सेवाहरू अब टीकापुर अस्पताल में उपचार का लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवाहरू
2: हाड़ जोड़ने विशेषज्ञ सेवा र विशेषकृत आर्थ्रोस्कोपी सेवा जोड़नी को दूरबीन बाट शल्यक्रिया
1: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पाठेघर को शल्यक्रिया सेवा
2: बाल रोग विशेषज्ञ सेवा जनरल सर्जन द्वारा विभिन्न किसिम का शल्यक्रिया सेवा ल्याप्रोस्कोपी दूरबीन को माध्यम बाट पेट को शल्यक्रिया सेवा
1: जनरल फिजिशियन विशेषज्ञ सेवा
2: रेडियोलोजिस्ट विशेषज्ञ सेवा
1: दन्त रोग सेवा
2: मृगौला का बिरामी का लागि डायलिसिस सेवा
1: मनोचिकित्सक विशेषज्ञ सेवा
0: हरेक महीना को प्रत्येक शनिवार
1: र सिटी स्कैन सेवा
2: गंभीर बिरामी का लागि भेन्टिलेटर सहित को आईसीयू एसडीयू सीईओएनसी र बाल बालिका का लागि एसएनसीयू सेवा
1: रोग पहचान का लागि प्रयोगशाला सेवा बायोकेमिस्ट्री इम्युनोलॉजी हिस्टोपैथोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पारासिटोलॉजी सेरोलॉजी इंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी डिजिटल वीडियो एक्सरे अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे सेवा ईसीजी फिजियोथेरापी सेवा अस्पताल का अन्य सेवाहरू स्वास्थ्य बीमा सेवा सुरक्षित गर्भपतन सीएसी सेवा
2: फार्मासिस्ट द्वारा फार्मेसी सेवा 24 घंटा
1: 24 घंटा इमर्जेन्सी सेवा एम्बुलेन्स सेवा सब वाहन सेवा
2: हिंसा पीड़ितहरूका लागि ओसीएमसी सेवा मेडिको लिगल सेवा
1: सब परीक्षण सेवा सर्पदंशको उपचार
2: 12 रक्षित समूहलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा सामाजिक सेवा इकाई
1: जनस्वास्थ्य तर्फ खोप सेवा एआरटी सेवा टीबी लेप्रोसिजिन एक्सपोर्ट सेवा
2: सेवा पाउन कठिनाई भएमा अस्पताल प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-488 सूचना अधिकारी पदमराज भट्ट फोन नम्बर 97268